0: Asian Games, Asian Championships, Lavlina Borgohain stepped for the 75-kilogram final versus two-time world's medalist Emma Sue Greentree of Australia, but she lost a real close bout. Lavlina had an early exit at Birmingham Commonwealth Games, but the decorated boxer did not look convinced even after winning the silver. India's fifth gold in boxing was the first gold from a male boxer. Sachin Sivach win a gold in a tremendous comeback, third round finish versus try again morning Ndivelo of Namibia. It was then the turn of Ankush Panghal to grab gold against England's Dimeji Shitu for the men's 80-kilogram final. He had a poor first round, but then came back strongly in the next two rounds to outsmart Shitu and win the gold superbly. In the final medal bout in boxing for India, Narinder from Hisar, Haryana, had a tough fight against England's Damer Thomas in the 90-kilogram men's category. The two boxers slugged it out before Damer came out victorious. On this historic performance of Indian boxing in Commonwealth Games 2026, let's hear from the president of the Boxing Federation of India, Mr. Ajay Singh.
1: It has been a historic last 2 days, winning 7 golds and 3 silver medals. This is the largest ever number of golds and the best performance of any country ever in the 100-year history of the Commonwealth Games.
2: मुनीश, अब बात करते हैं एथलेटिक्स की। भारत का सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में उतरा, जिसमें कुल 32 खिलाड़ी शामिल थे, 22 पुरुष और 10 महिला। भारत ने एथलेटिक्स में अपना अब तक का सबसे शानदार कॉमनवेल्थ गेम्स कैंपेन दर्ज किया, जिसमें एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स को मिलाकर कुल रिकॉर्ड 16 मेडल्स हासिल किए। इनमें से 10 मेडल्स एबल बॉडीड इवेंट्स और 6 पैरा इवेंट्स में आए। मेंस जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यूटांट यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर्स का पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह ने भारत के लिए सबसे शानदार इंडिविजुअल कैंपेन्स में से एक पेश किया। उन्होंने 10,000 मीटर्स 27 मिनट्स 49.78 सेकंड्स में पूरा करके सिल्वर जीता और इसके बाद 5,000 मीटर्स में 13 मिनट्स 24.95 सेकंड्स का समय लेकर ब्रॉन्ज अपने नाम किया। इसके साथ ही वो कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही एडिशन में 2 ट्रैक मेडल्स जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। भारत को जंपिंग इवेंट्स में भी जबरदस्त सफलता मिली। सर्वेश कुशारे ने मेंस हाई जंप में सिल्वर हासिल किया, जबकि मुरली श्री शंकर ने लॉन्ग जंप में लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर अपने नाम किया। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने सिल्वर जीता और सिल्वा प्रभु ने ब्रॉन्ज हासिल कर भारत का डबल पोडियम पूरा किया। प्रवीण के लिए ये जीत बेहद खास रही, जो बर्मिंघम 2022 में सिर्फ 3 सेंटीमीटर से ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे। उधर तेजस्विन शंकर ने डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज जीता और इस कठिन 10 इवेंट कंपटीशन में कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। सीमा कालीरमना ने विमेंस डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज अपनी झोली में डाला। हालांकि कुछ परिणाम गेम से पहले की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर्स के हीट्स में ही बाहर हो गए। अनिमेश कुजूर ने अपना 200 मीटर हीट जीतकर प्रभावित किया, लेकिन वह सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सके। तेजस शिरसे गेम से पहले के अपने बेहतरीन फॉर्म को 110 मीटर हर्डल्स में मेडल में तब्दील नहीं कर पाए, जबकि पारुल चौधरी 3000 मीटर और 5000 मीटर स्टीपल चेज दोनों में पोडियम से बाहर रही। पैरा एथलेटिक्स में भारत को 3 गोल्ड मेडल्स और 2 यादगार 1-2 फिनिश हासिल हुई। शर्मिला धनकर ने विमेंस F57 शॉटपुट में भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया। शिल्पा के शायला को ब्रॉन्ज अवार्ड किया गया। इसके बाद दिलीप महादुगावित ने मेंस T47 100 मीटर में 10.71 सेकंड्स के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता, जबकि मोहम्मद बासिल ने सिल्वर अपने नाम किया। भारत ने अपने पैरा एथलेटिक्स कैंपेन का अंत F57 शॉटपुट में एक और डबल पोडियम के साथ किया। सुमान राणा ने गोल्ड जीता, जबकि शुभम जुयाल ने सिल्वर हासिल किया, जो भारतीय एथलेटिक्स के इस ऐतिहासिक कैंपेन का बेहद शानदार अंत रहा।
0: Now let's move on to weightlifting. India fielded an 11-player contingent in weightlifting, spearheaded by world champion Mirabai Chanu, who impressed all by lifting 85-kilogram Commonwealth record and a games record in snatch and a games record of 105-kilogram in clean.

0: clean and jerk with a total of 190 kg, a games record, winning gold in 48 kg category. But it was heartening to see Gyaneshwari Devi clinching the silver in 53 kg category with a 199 kg national record that she created in Glasgow. Bindya Rani Devi's bronze medal, Harjinder Kaur's 227 kg silver medal victory were the highlights as far as the women weightlifters were concerned. Moving on to the men's category, Rishikanta Singh created a games record in snatch when he lifted 121 kg and a total of 264 kilograms with 143 in clean and jerk, got a silver for India. Muthupandi Raja got a silver in 65 kilogram category. Ajay Babu got a silver in the 79 kilogram category. And Lovpreet Singh in the 110 kilogram category got a silver. Para power lifting mein Bharat ka naam tab roshan hua jab Bihar ke Jhandu Kumar ne itihas racha. Men's heavyweight mein teesre sthan par aaye aur Bharat ko 2026 Commonwealth Games ka pehla medal dilaya. ये भले ही ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन बचपन से ही पोलियो का शिकार हुए झंडू कुमार ने ये साबित तो कर दिया कि शरीर की कमजोरी इरादों की मजबूती के आगे कुछ नहीं।
1: ग्लासगो में भारतीय जूडो दल ने 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अस्मिता डे ने महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग फाइनल में कनाडा की हेदी क्वाश को गोल्डन स्कोर में हराकर भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया और कॉमनवेल्थ गेम्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष जूडोका बन गए। यामिनी मौर्या ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के बेहद कड़े गोल्डन स्कोर फाइनल में इंग्लैंड की एसेलिया टॉपराक के खिलाफ खेलते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं उन्नति शर्मा ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में साउथ अफ्रीका की स्काई को महज 67 सेकेंड्स में इपॉन से हराकर ब्रॉन्ज जीता और भारत का 4 मेडल टैली पूरा किया। भारत के लिए ये 2 गोल्ड मेडल्स ग्लासगो को जूडो के इतिहास में एक ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू एडिशन बनाते हैं।
0: अब बात करते हैं लॉन बोल्स की। 4 इवेंट 6 एथलीट्स। पुरुषों की जोड़ी नवनीत सिंह और दिनेश कुमार, इन्होंने ग्रुप स्टेज में लगातार 4 जीत के साथ मजबूत शुरुआत की, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ एक अहम टाई ब्रेक हारने के कारण वे मेडल राउंड में नहीं पहुंच पाए। पुरुषों का सिंगल्स पुतुल सोनोवाल के द्वारा भारत ने खेला। इन्होंने अपने पहले मैच में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रायन बेस्टर, जो कनाडा के हैं, उनको एक रोमांचक टाई ब्रेक में हराकर सुर्खियां बटोरी। महिलाओं की जोड़ी रूपा रानी तिर्की और पिंकी की थी, मेडल की दौड़ में शामिल होने के लिए आगे नहीं बढ़ पाई। यानी लॉन बोल्स इवेंट में इस बार कोई मेडल हासिल नहीं हुआ।
1: 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भारत की महिला टीम ने अपना कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू किया, लेकिन अपने 3 ग्रुप मैचेस हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भी भारत बिना किसी मेडल के वापस लौटा। इसके अलावा स्विमिंग में भी भारत को कोई मेडल नहीं मिला।
0: Well then, the Commonwealth Games 2026 have come to an end. Australia topped the final medal standings at the Commonwealth Games with 70 gold medals and 170 medals in all. India finished 4th with 13 golds, 17 silvers and 9 bronze medals.

स्कॉटलैंड में 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स का रोमांच अब थम चुका है। कम खेलों वाले संक्षिप्त और अनूठे संस्करण में भी भारत के जाबाज खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान को पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा रखा। दरअसल ग्लासगो में जब नियम बदले गए, खेल बदले गए और कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी, टेबल टेनिस और क्रिकेट को जगह नहीं मिली तो हर किसी ने सोचा कि इन खेलों के नहीं रहने से भारत खेलों की औपचारिक शुरुआत से पहले ही पदक की दौड़ में पिछड़ गया है। लेकिन तब शायद ऐसा सोचने वाले ये भूल गए कि भारतीय खिलाड़ियों का यकीन चुनौतियों से डरने में नहीं बल्कि नया इतिहास रचने में है। भारतीय एथलीट अपनी सहूलियत से नहीं अपने हौसले से विरोधियों को हराते हैं। तमाम मुश्किलों के बाद भी भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 39 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथे स्थान पर कब्जा किया। मेडल्स की इस रेस में वक्त इस बात का गवाह बन गया कि भारतीय मुक्केबाजों ने ग्लासगो की बॉक्सिंग रिंग को पदक जीतने का सबसे बड़ा मंच बना दिया। अपने मुक्कों के दमदार प्रहार से विरोधियों को बेदम करने वाले हमारे मुक्केबाजों ने एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक समेत 10 पदक जीतकर इतिहास लिख दिया। अपने अब तक के सबसे सफल बॉक्सिंग अभियान में जीतने की जिद रखने वाली भारत की बेटियों ने अपने पुरुष साथियों को भी मेडल जीतने की होड़ में पीछे छोड़ दिया। प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने जहां महिला वर्ग में तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों पर लहराया, दूसरी तरफ पुरुषों में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल के मुक्कों के सामने विरोधी नतमस्तक हो गए। लेकिन इतिहास सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं बल्कि जूडो मैट पर भी लिखा गया। इस खेल में मेडल तो मिलता रहा था लेकिन पदक की स्वर्णिम चमक पहुंच से दूर थी। इस बार अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में वह कर दिखाया जो इससे पहले कोई भारतीय जूडोका नहीं कर पाया था। उन्होंने जूडो में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके बाद तो टीम जैसे नए जोश और उमंग से भर गई। तभी तो पहली स्वर्णिम सफलता के कुछ ही देर बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर सफलता को दोगुना कर दिया। एक सच ये भी है कि इन तमाम सफलताओं की नींव इन खेलों की शुरुआत में ही पड़ गई थी जब गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में देश को पहला सोना दिलाया। एक बार जीत का ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। ट्रैक एंड फील्ड पर भी हमारे खिलाड़ियों की चमक फीकी नहीं पड़ी। चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश को निराश नहीं किया और जैवलिन थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया। 10 इवेंट वाले डेकाथलान में तेजस्वी शंकर ने भले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता लेकिन ये किसी स्वर्ण से कम नहीं था। डेकाथलान जैसे मुश्किल खेल में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी बने। लेकिन इस बार असली सनसनी तो पैरा एथलीट रहे। दिलीप महादो गावित ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.71 सेकंड का नया गेम्स रिकॉर्ड बनाकर कमाल ही कर दिया।

0: शर्मिला धनखड़ और सुमन राणा ने भी शॉटपुट में सोने के पदक पर निशाना साधा। भारत की कामयाबी के सफर के साथ ही कई और नाम भी रहे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे धुरंधरों ने साबित कर दिया कि खेल चाहे जो भी हो, जहां भी हो, भारतीय खिलाड़ियों का जज्बा कभी कम नहीं होता। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये सफर आगे बढ़ चला है। भले ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन का ऐलान हो गया है, लेकिन ये कारवां अब ग्लासगो की प्रसिद्ध क्लाइड नदी से आगे अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरफ बढ़ चला है। 2010 के बाद 2030 में हम दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी करने जा रहे हैं। मतलब अगली बार जब दुनिया हमारे खिलाड़ियों से टकराएगी तो मैदान भी हमारा होगा और करोड़ों भारतीयों का समर्थन भी। स्कॉटलैंड की धरती पर इस बार अनेक आशाएं पूरी हुई, कई उम्मीदें टूटी और बहुत सारी नई आस भी जगी। कुल मिलाकर ग्लासगो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे आंका जा सकता है, इस प्रदर्शन से क्या नई उम्मीद जगती है, साथ ही अहमदाबाद में अतिथि देवो भव की हमारी प्राचीन परंपरा को एक बार फिर से साबित करने का कितना बड़ा मौका है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वो खास मेहमान, खेल विश्लेषक और खास तौर पर पैरा गेम्स पर नजर रखने वाले महावीर रावत और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के साई के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड त्रिदीप भुइयां। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू।
0: त्रिदीप, शुरुआत अगर आपसे करें तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि तमाम जो परिस्थितियां थी उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन आया उसकी कितनी सराहना बनती है?
2: देखिए, अगर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि ये कर्टेल्ड वर्जन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स थे, जिसमें बहुत सारे हमारे जो प्रीवियस एडिशंस में जहां हमारे मेडल आते थे, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आर्चरी के बावजूद हमने 39 मेडल्स घर लाए और उन्हीं 39 में से 13 गोल्ड हैं। उन 13 में से पहली बार बॉक्सिंग में हम 10 फाइनल में पहुंचे, जिसके बदौलत हमने 7 गोल्ड ट्रांसफॉर्म किया। वही पैरा एथलेटिक्स में भी पहली बार हमने स्वर्ण पदक जीता। अगर आप उस तरह से देखें एथलेटिक्स में, भले हमने इस बार स्वर्ण नहीं जीता, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें 10 मेडल, ये भारतीय एथलेटिक्स कंटिंजेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इन फॉरेन सॉइल। अगर आप टोटल मेडल से देखें, जूडो जैसे आपने कहा पहली बार स्वर्ण मेडल आए हैं और टोटल ऑफ 4 जो किसी एडिशन में नहीं आए, प्रीवियस बेस्ट हमारा 3 ही था। पैरा एथलेटिक्स में आज तक राष्ट्रमंडल खेल में हमने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जो कि इसी एडिशन में हमने एक ही बार में ही 7 मेडल हमने अर्न किए हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें तो ओवरऑल आप ये राष्ट्रमंडल खेल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और मैं आशा करता हूं कि आने वाले राष्ट्रमंडल खेल में जब सारे गेम्स दोबारा आएंगे तो हमारी मेडल टैली में रैंकिंग भी इंप्रूव होगी।
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है?
1: देखिए, अगर हमारे लिए नहीं थे तो सभी के लिए नहीं थे, लेकिन ये है कि उन स्पोर्ट्स में हमारी ताकत बहुत ज्यादा थी, वहां से हम मेडल्स बहुत निकालते हैं। जैसे कि हमारे रेसलर्स, हर किसी को पता है जो भारतीय खेल जानता है कि कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे वेटलिफ्टिंग हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हमको भाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि 39 में से आपके मेडल जो गोल्ड हैं उसकी संख्या लगभग 30% है। तो ऐसा नहीं कि हम सिल्वर जीत के 39 लाए हैं या ब्रॉन्ज जीत के 39 तक पहुंचे हैं, हमारा गोल्ड का प्रेजेंस भी उतना रहा है। हाँ, ये मैं जरूर चाहूंगा कि अगर एथलेटिक्स में थोड़ा सा हमारे गोल्ड की संख्या बढ़ती तो हम जरूर और ज्यादा खुश होते, क्योंकि देखिए मदर स्पोर्ट्स होते हैं एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिमनास्टिक्स, ये मदर स्पोर्ट है। आपकी मेडल टैली कितनी ऊपर जाती है ये इन 3 स्पोर्ट्स से काफी डिफाइन होता है कि आप एथलेटिक्स में कैसा करते हैं, आप पूल में कैसा करते हैं और आप जिमनास्टिक में कैसा करते हैं। तो इन 3 खेलों में जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे, और मैं हमेशा थोड़ा और इसलिए उम्मीद करता हूं कि अब मैं वो भारत नहीं देखता हूं जो कॉमनवेल्थ में इतने मेडल से खुश हो जाए, नंबर 4 पे आके खुश हो जाए या कॉमनवेल्थ में खुश हो जाए, मैं उस भारत को देखता हूं जो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, जिसके यहां पे एक बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, जहां पे यंग एथलीटों की बहुत ज्यादा भरमार है, टैलेंट को रिकवर किया जा रहा है। और मैं खुद, मेरे साथ साई के दोस्त मेरे बैठे हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्लेयर्स को दी जा रही है, फॉरेन एक्सपोजर उनको बहुत दिया जा रहा है। तो जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो वी कुड हैव डन मच बेटर, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अब भारत वो बेंचमार्क लेके नहीं चलता है, अब हमारा बेंचमार्क वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स ही है, क्योंकि हमने बनाए हैं स्कीम्स जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम जो है, तो हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक की तरफ ध्यान दें। सो आई एम हैप्पी कि बॉक्सिंग से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, हमारे पैरा खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया, खैर पैरा से तो मैं उम्मीद कर ही रहा था, बट वी कुड हैव डन लिटिल मच बेटर इन एथलेटिक्स।
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत की मौजूदगी हमारी बढ़ती

0: खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है।
1: नहीं, खेल शक्ति हमारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये नतीजा है पिछले लगभग 7-8-10 सालों से जो एक सिलसिलेवार तरीके से स्कीम्स को पहले सोचा गया और फिर मैदान पे उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे मैं सोचता हूँ कि एथलेटिक्स में थोड़ा सा अगर हम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते, खिलाड़ियों ने तो अपनी जान झोंकी, 10 मेडल हमें आए, लेकिन गोल्ड का कॉलम हमारा खाली रह गया। इसमें जैवलिन, जिसमें भारत एक बहुत बड़ी फोर्स है, और अब तो इतने सारे जैवलिन थ्रोअर्स हैं भारत में, वहां पे श्रीलंका के जो पथिरागे तरंगा आए हैं सुपर, मैंने उन्हें खुद साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन जो रांची में हुआ था उसमें देखा था, एंड ही इज अ सुपर एथलीट। लेकिन उसके बाद जो भारत ने परफॉर्मेंस किया कमेंडेबल है, वहां मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ और बेटर कर सकते थे। क्योंकि देखिए, अब वो जमाना चला गया जब हम कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके खुश हो जाते थे, अब हमारा जो मिशन है वो ओलंपिक्स है, हमारा मिशन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हमारा मिशन अब एशियन गेम्स में डोमिनेट करना है। तो मैं खुश जरूर हूं, और इस बात से भी खुश हूं कि 39 में से जो लगभग 33% है वो गोल्ड मेडल है। तो ऐसा नहीं कि हम ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर की संख्या की लेके 39 गए, हमने गोल्ड भी कमाए। हैट्स ऑफ टू ऑल द बॉक्सर्स, ऑल द पीपल इन द फेडरेशन जिन्होंने कमाल किया है। तो मैं खुश बहुत हूं, लेकिन थोड़ा सा अगर एथलेटिक्स, स्विमिंग और जिम्नास्टिक्स में और अच्छा किया होता, बिकॉज दीज आर मदर स्पोर्ट्स, और एशियन गेम्स में हमारी मेडल टैली कैसी होगी ये 3 गेम्स में काफी कुछ डिपेंड करता है, थोड़ा सा अगर वहां हमने परफॉर्म और अच्छा किया होता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अब वो नया भारत देखता हूं जहां हम सिर्फ कॉमनवेल्थ से खुश नहीं है, हमें ओलंपिक्स में मेडल चाहिए।
0: तो जैसा कि महावीर ने कहा, त्रिदीप की मुक्केबाजों ने तो इस बार कमाल ही कर दिया, ऐसे दमदार पंच पड़े कि एक ही दिन में मेडल टैली का पूरा गणित बदल गया। क्या बॉक्सिंग में इतने अच्छे प्रदर्शन की पहले से हम उम्मीद कर रहे थे?
2: देखिए, जैसे पिछले पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो हमारे बॉक्सिंग में परफॉर्मेंस रहा, तो फेडरेशन ने उसमें काम किया, जैसे उन्होंने एक फॉरेन कोच लाए वापस, सैंटियागो, जो पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के, वो एक्सक्लूसिवली दोबारा आए सिस्टम में जहां वो पहले से बॉक्सर्स को जानते थे, और इन्होंने इस बार फोकस सिर्फ फीमेल बॉक्सर्स पे किया है। अगर आप प्रीवियसली भी अगर आप हमारी परफॉर्मेंसेस देखें तो हमारी वुमेन बॉक्सर हमेशा डोमिनेंट रही है मेल के कंपैरिजन में। तो अगर उस हिसाब से देखें, 7 लड़कियों की कैटेगरीज थी वेट, जिसमें से हम लोग 6 में फाइनल पहुंचे हैं, वो इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, और उन 6 में से हमने 5 में स्वर्ण पदक जीता है। तो बेसिकली अगर आप लड़कियों के साइड में देखें तो ये मैं बोल सकता हूं, और जो महावीर जी भी एग्री करेंगे, इट वॉज अ टोटल डोमिनेशन। बट उधर लड़कों की तरफ देखें तो जैसे बहुत सारे डेब्यूटेंट, नरेंद्र, वो जो एक वेटरन बॉक्सर है, वो पहले भी मेडल ला चुके हैं, उन्होंने अपना दोबारा मेडल लाला, लेकिन जैसे पहली बार डेब्यूटान जा रहे हैं अंकुश, वो वापस स्वर्ण पदक लेके आए हैं, जिन्होंने डेफिनेटली हमारे मेडल टैली को एनहांस किया है। और अगर आप देखें, जैसे आपने बताया बॉक्सिंग के बाउट्स ही ऐसे रखे थे कि सारे सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल्स एक ही दिन थे, तो वो तो हम लोगों ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि भले हम मेडल टैली में अभी पीछे हैं, एक समय पे हम लोग 10वें नंबर पे थे, जहां नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, कनाडा, ये हमसे आगे थे। जैसे ही लेकिन बॉक्सिंग के मेडल्स आने शुरू हुए, वो पलरा बदल गया, और मुझे बहुत खुशी है कि डिस्पाइट द नंबर ऑफ गेम्स हैव बीन रिड्यूस्ड, वी हैव स्टिल अचीव्ड आवर लास्ट रैंकिंग ऑफ 4th।
0: तो महावीर, बॉक्सिंग की मेडलिस्ट में जो नाम दिखाई देते हैं, और जैसा कि त्रिदीप ने बताया कि कुछ जाने पहचाने नाम हैं, तो कुछ ऐसे भी नए चेहरे थे जिनके बारे में बॉक्सिंग की दुनिया तो क्या कहें, लेकिन जो खेल प्रेमी हैं वो बहुत कुछ नहीं जानते थे। तो क्या माना जाए कि यह प्रदर्शन हमारी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ और सुनहरे भविष्य का संकेत है?
1: इससे ज्यादा ये हमारी बेटर प्लानिंग का संकेत है कि आप प्लान करते हैं, एथलीट्स को एक्सपोजर देते हैं, उनको अच्छी कोचिंग, उनके हिसाब से प्लान करते हैं। और एक बात त्रिदीप कह रहे थे कि जो फीमेल बॉक्सर्स हैं, और मुझे पता नहीं मैं ये कब लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा कि भारत अगर तभी डोमिनेट कर पाएगा जब हमारे फीमेल एथलीट्स डोमिनेट करेंगे। क्योंकि फीमेल, चाहे आप वेट लिफ्टिंग में हो, हम मीराबाई चानू को देखते हैं, हम बॉक्सर्स में हो तो मैरी कॉम ने पहला नाम लिया था, पीवी सिंधु है, तो जो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन है बॉक्सिंग में भी, उन्होंने बहुत अच्छे मेडल्स दिए हैं। वेट लिफ्टिंग में भी अगर आप देखें तो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन ही बहुत अच्छा रहा है, और उनका जो कन्वर्शन रेशियो है वो भी बहुत अच्छा रहा है। तो मैं इस बात से तो बहुत खुश हूं, और अभी भी अगर हमारा फीमेल स्पोर्ट्स के प्रति ग्रास रूट लेवल पे, हालांकि साई की तरफ से बैठे हैं दोस्त, अस्मिता लीग चल रही है जहां हर स्पोर्ट का एक अपना लीग होता है, आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन फीमेल स्पोर्ट्स। और घरों को भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये एडवाइस करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी लड़कियों को मैदान पे भेजिए, क्योंकि हमारी लड़कियों में वो ताकत है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट कर सकते हैं। आई टोटली सी कि अहमदाबाद जो 2030 होगा, या अहमदाबाद में क्यों जाऊं मैं, जापान में देखिएगा जो हमारी फीमेल एथलीट्स हैं, दे विल एनी डे ओवर नंबर इन मेडल टैली टू आवर मेल कंपेटिटर्स।
0: जी, और जूडो में भी इस बार कमाल हुआ है, क्योंकि डबल गोल्ड मेडल की कामयाबी, ये प्रदर्शन क्या जूडो में

0: हमारी बढ़ती ताकत की तरफ इशारा कर रहा है?
1: देखिए, अगर जैसे आपने बताया कि हम हमेशा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हमेशा अच्छे रहे, मुक्केबाजी हो, रेसलिंग हो, जूडो में भी अगर आप देखें हमारा प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेल में, हमने मेडल लाए, बट हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे थे जैसे हम बॉक्सिंग और रेसलिंग में किया। लेकिन इस बार अस्मिता दे, जो त्रिपुरा के इतने इंटीरियर जगह से आती हैं, उन्होंने देश का पहला स्वर्ण पदक जीत के अपने देश का तो नाम रोशन किया ही, बाकी अपने स्टेट से जो इतने इंटीरियर एरिया से आ रहे हैं, तो फिर इससे जैसे महावीर जी बोल रहे हैं, जो हमारा टैलेंट पूल है, इट्स नॉट इन द मेन सिटीज, इट्स इन स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। एंड सरकार तो कर ही रही है, उसके अलावा जितने और स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ये ऐसा एक मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा जिससे कोई भी एथलीट को अगर कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए खेलने के लिए वो कभी निराश ना हो। तो अब जैसे ही अस्मिता ने स्वर्ण लाया, उसके पीछे हमारे हर्ष सिंह आ गए, जो पहले मेल एथलीट बने जिन्होंने स्वर्ण पदक लाया। जैसे बताया था, हमारी एक्सपेक्टेशन तुलिका और अवतार सिंह से भी थी, जो पहले खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन ये नए बच्चों ने जो आके जो ये प्रदर्शन दिया है, आई एम 100% श्योर कि हमारा फ्यूचर जूडो में अच्छा होगा।
2: इस बात को ना थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ। अस्मिता कहाँ की लड़की है? त्रिपुरा की। जब कोई दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई से निकलता है ना, तो जो गाँव में बैठे लड़के लड़कियां उनको लगते हैं वहां पे न जाने वो क्या खा रहे होंगे, न जाने क्या ट्रेनिंग कर रहे होंगे, न जाने वो कौन सा वहां पे एक सिस्टम होगा जिसकी वजह से चैंपियन निकल रहे हैं। लेकिन जब हरियाणा के एक छोटे से गांव से जहां सूखा बहुत आता है वहां से जब शर्मिला निकलती है, जब त्रिपुरा की एक ऐसी जगह से जहां जिसके फादर एक सिंपल इलेक्ट्रीशियन थे और उन्होंने अपनी बेटी अस्मिता को बहुत सिखाया, हालांकि 2025 में उनका देहांत हो गया और मैं अस्मिता का इंटरव्यू देख रहे थे, उनके जब भी वो अपने पिताजी का नाम ले रही थी उनकी आंख में आंसू आ रहे थे। तो जब ये स्टोरीज गांव तक जाती हैं, जब ये स्टोरीज बाहर आती हैं, तब जो हमारे इंटीरियर के जो बच्चे उनको लगता है नहीं ये तो हम ही में से एक है, और जब आप में से एक निकल के जाता है तो तीन और अस्मिता आगे आके लड़ने की कोशिश करती है, फिर उन्हें ये नहीं लगता कि बॉम्बे, दिल्ली या फिर मद्रास या कोलकाता में कुछ जादू हो रहा है, जादू हमारे इंटीरियर में ही है, तो उनमें वो एक सेल्फ बिलीफ आता है कि वी कैन आल्सो डू दिस।
0: बिल्कुल। और महावीर लगे हाथ ये सवाल भी कि नीरज चोपड़ा ग्लासगो में गोल्ड तक तो नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन इंजरी से वापसी के बाद उनका सिल्वर जीतना भी भारत के लिए क्या राहत की बात है?
2: अब जो आदमी ओलंपिक्स में गोल्ड जीत चुका हो उससे आप कॉमनवेल्थ में सिल्वर तो राहत नहीं मान सकते हैं, बट हमें एक एथलीट की उम्र भी देखनी होगी, वो अपने किस करियर के किस पड़ाव पे हैं, ये नीरज चोपड़ा अच्छा जान सकते हैं, उनके कोचेज अच्छे जान सकते हैं, लेकिन आई थिंक ही हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। नीरज चोपड़ा ने जो कमाल किया है वो मुझे नहीं लगता है कि इस देश की जो सूरत है, जो नक्शा है स्पोर्ट्स का बदलने में, उस एक अकेले लड़के ने आज देखिए आप, मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाता हूं, मैं त्यागराज जाता हूं, मैं छत्रसाल जाता हूं, सब जेवलिन फेंक रहे हैं, खेल में रेवोल्यूशन कैसे लाते हैं ये नीरज चोपड़ा ने दिखाया। तो अब वो उनमें क्या वो बात है ये सिर्फ नीरज चोपड़ा जानेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मुझे एक और चिंता की बात लगी कि नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैं जब भी रन अप पे दौड़ रहा था ना मुझे डर लग रहा था। तो एक एथलीट को डरना नहीं चाहिए कि उनकी बॉडी कब ब्रेक हो जाएगी। तो वी शुड रिस्पेक्ट हिम, वो बहुत कुछ उन्होंने दे दिया है, अब उनसे जितना कुछ और आ जाए ये पॉजिटिव है।
1: अब मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जैसे ग्लासगो में अगर आप देखें तो कंडीशंस वेर आल्सो नॉट इजी, इट वाज वेरी कोल्ड और वहां पे हेडविंड आ रहा था जिसके तहत वो डिस्टेंस नहीं जा रहे थे। अगर आप श्रीलंकन को भी देखें, उन्होंने सिर्फ एक ही लेजिटिमेट थ्रो मारा जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और ये जो फील्ड ऑफ एथलीट्स जिन्होंने जैवलिन पे कम्पीट किया कॉमनवेल्थ गेम्स, ये एज गुड एज द वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक। इट हैड एंडरसन पीटर्स जो पहले के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, केशव वॉलकॉट जो पिछले बार टोक्यो के वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल जीता है, फिर अरशद नदीम जो ओलंपिक चैंपियन है वो भी रह चुके हैं। बहुत डिफिकल्ट फील था, इसमें पुराने जाने माने एथलीट्स 90 प्लस थ्रोअर्स भी थे जो उस दिन स्ट्रगल कर रहे थे, बट वही में से अगर आप देखें नीरज के साथ यशवीर जो अपना डेब्यू कर रहा था, पहला उनका कॉमनवेल्थ गेम्स और उन्होंने मेडल लाए। अगर हम इसी की बात करें, आप देखिए जैवलिन में 3-4 सालों में हमें कितने अलग अलग मेडलिस्ट मिले हैं। आप एशियन गेम्स दोबारा पिछले वाले में जाइए, वहां किशोर कुमार जेना आए थे जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में सचिन यादव आए थे जिन्होंने नीरज को भी पछाड़ा था और फोर्थ फिनिश किया था। सो दिस शोज दैट द लेवल ऑफ बेंच स्ट्रेंथ इन जैवलिन हैज इंप्रूव्ड, एंड एज महावीर जी हैज सेड, इट जस्ट रिक्वायर्स अ रेवोल्यूशन फॉर इट टू डू बेटर एट द हायर स्टेज।
0: और त्रिदीप, तेजस्विन शंकर ने तो कमाल ही कर दिया, हाई जंप में इंजरी के कारण बीच में ही स्पर्धा से हट गए, इसके बावजूद डेकाथलान जैसे मुश्किल इवेंट में उनका पदक जीतना, ये तो बड़ी तारीफ उनकी बनती है।
1: एकदम डेफिनेटली, जैसे कि बर्मिंगम

0: गेम्स में तेजस्विन सिल्वर मेडल लेके आए थे हाई जंप में, बट डेकाथलॉन को जैसे एथलेटिक्स का बोलते हैं मास्टर इवेंट, क्योंकि इसमें आपको एक नहीं दो दिन कम्पीट करने पड़ते हैं और 10 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तेजस्विन जो हालांकि इन द लास्ट 2 ईयर्स उन्होंने अपना फोकस हाई जंप से थोड़ा डिकैथलॉन में लाया है, जिसके तहत उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल लाए हैं, और डिकैथलॉन में इस बार वो पहले इंडियन बने हैं जो डिकैथलॉन में उन्होंने मेडल लाया है, और उसके बावजूद वो पहले इंडियन भी बने हैं जो दो डिफरेंट इवेंट में उन्होंने मेडल जीता है। तो अगर आप तेजस्विन की बात बोले, तेजस्विन को मैंने बहुत करीबी से कैंप में भी देखा है, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही ट्रेन करते हैं, दिल्ली का लड़का है, बट वो लड़का लेकिन बहुत एजुकेटेड है, वो उसको पता है कि एक एथलीट को अपने बॉडी के साथ क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेन करना चाहिए, कब उसको पीक करना चाहिए, कब वो ऑफ सीजन होता है। तो ऐसे स्मार्ट एथलीट अगर और आते रहेंगे तो हमारी ऐसे मेडल टैली बढ़ती ही रहेंगी।
1: जी, और महावीर पैरा खिलाड़ियों ने भी इस बार कमाल कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल पर कब्जा किया, जिनमें 3 गोल्ड मेडल भी शामिल रहे। आपकी खास नजर रहती है पैरा गेम्स पर, तो ये प्रदर्शन सचमुच ऐतिहासिक कहा जा सकता है।
2: ऐतिहासिक भी है लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। पिछले 5-10 साल में अगर आप देखें कोई एक स्पोर्ट्स जिसने बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है वो है पैरा स्पोर्ट्स। रियो 2016 में हमारे 4 मेडल थे, एक गोल्ड बाय हमारे प्रेसिडेंट देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन का गोल्ड था, दीपा मलिक जी का सिल्वर था और वरुण भाटी का ब्रॉन्ज था। 4 मेडल लेके हम आए। उसके बाद हम टोक्यो में गए तो हम 4 से 17 19 पहुंचे और अब हम 29 पहुंचे हैं पेरिस में। ये मैं ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं। और हमें तो पता भी नहीं रहता कि हमारा इवेंट कौन सा होगा, क्योंकि पैरा में क्या होता है कि सारे इवेंट तो वो देते नहीं है। अगर एथलेटिक्स भी देंगे तो वो 100 देंगे, 200 400 नहीं देंगे। तो इट्स कॉमनवेल्थ गेम्स में वो एक इंक्लूसिवनेस की वजह से पैरा स्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं और इवेंट्स वो 5-6 महीने पहले पता चलते हैं कि ये इवेंट्स वहां पे होंगे। दिलीप की कहानी में बताऊं, दिलीप 400 मीटर के रनर है, वो 100 मीटर के रनर नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि दिलीप गवित वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो एथलेटिक्स के चेयरमैन सत्यनारायण जी हैं उन्होंने दिलीप के कोच से बात की कि आप इसे 3 महीने 100 मीटर के लिए ट्रेन कीजिए। और उस लड़के ने उसको अवसर मिला 100 मीटर दौड़ने का और उसने 10.71, कैन यू बीट 10.71, हमारे गुरिंदर वीर के 10.39 है
1: बिल्कुल,
2: और दिलीप का एक हाथ नहीं है फिर भी वो 10.71 क्रॉस गया। और उसके जो लास्ट के 50 मीटर अगर आप देखो, अमेजिंग। जैसे यूसेन बोल्ट की, ही इज अ बैड स्टार्टर लेकिन ही इज अ ग्रेट फिनिशर। दिलीप ने भी बहुत स्टार्ट इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन आखिर का 50 मिनट मेरे ख्याल से उन्होंने 5-5.5 सेकंड में खत्म किया। और वैसे ही शर्मिला की स्टोरी, एक कहानी महिला की और जो बताती है कि महिला शक्ति क्या नहीं कर सकती। शी रिफ्यूज टू गेट डिफीटेड इन लाइफ। पहली शादी हुई, अब्यूजिव मैरिज था, पति ने घर से बाहर निकाल दिया, हार नहीं मानी, अपनी 2 बच्चों के साथ वो बाहर चली गई। जब से शर्मिला पैदा हुई तब से उनको पता चला कि उनकी माँ की आंखें नहीं, उन्होंने गोल्ड अपनी माँ को डेडिकेट किया। तो ये सब कहानी है। देखिए पैरा में आप जितना जाएंगे उतने आपको लगेगा यार ये तो यहाँ हर कोई एक कहानी है। तो आई एम वेरी हैप्पी अभी तक के जो टोटल कॉमनवेल्थ में थे वो मेडल एक तरफ और इस बार के जो कॉमनवेल्थ मेडल है वो हमारे एक तरफ। बट हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर प्लानिंग दिस। हमने इवेंट देख लिए थे कि कौन से इवेंट है। हमारे दोनों फौजी जो हैं जियाल और सुमन राणा दोनों मेडलिस्ट हैं। और ये भी एक कहानी है कि जो फौज में इंजर्ड हो जाते हैं, जो हमारे फोर्सेज में इंजर्ड हो जाते हैं, आप कृपया पैरा स्पोर्ट्स की तरफ आइए और वहां पे अपना फ्यूचर बनाए। क्योंकि आप फिट तो हैं, आप वहां पे बहुत सारे अच्छा परिश्रम भी कर चुके हैं, आप यू आर वेरी फिट मेंटली एंड फिजिकली, बट ड्यू टू ऑन ड्यूटी आपकी कुछ डिसेबिलिटी आ गई है। तो आप पैरा स्पोर्ट्स में आइए और अपने देश का झंडा फौज में नहीं तो खेलों में आप ऊपर कीजिए। और सुमन राणा इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है जिन्होंने शॉटपुट में गोल्ड जीता है।
1: जी महावीर, आपकी बातों से और प्रदर्शन से दोनों मिलाकर ऐसा लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स में काफी कुछ काम हो रहा है
2: पूरा, और सरकार का इसमें पूरा। मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, नेशनल गेम्स होता है, यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, सरकार ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी कराया है और एक नहीं 2 बार कराया है। और मैं सुनने में आ रहा हूँ कि जल्दी 3रा एडिशन भी होने वाला है। तो ये खिलाड़ी आते हैं, उनको टीवी पे अपना गेम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए जिन्होंने पहले तो विकलांग शब्द हटाया, दिव्यांग शब्द रखा, थोड़ी क्रेडिबिलिटी दी। किस प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात की? लोग अक्सर क्या होते थे, जीते हुए एथलीट आते थे, उनसे मिलते थे, फोटो खिंचाते, खत्म हो जाते थे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्रेंड शुरू किया कि अगर मैं एबल बॉडी के एथलीट से मिल रहा हूं तो मैं पैरा के एथलीट से भी मिलूंगा। वो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं जाने से पहले, जीतने के बाद। तो उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है कि नहीं, आप इस सिस्टम का हिस्सा हो। तमाम स्कीम्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है, चाहे वो टॉप्स हो, वो सब में पैरा खिलाड़ी शामिल हैं। तो हमारे पैरा एथलीट

0: को भी उतना ही फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है, उतना ही बजट मिल रहा है, एसीटीसी में उनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है जितना कि नॉर्मल बॉडी का है. तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट और उसका डोमिनेंस अब हमें दिखने लग गया है मेडल टैली में.
1: जी, और प्रदीप कुछ ऐसे खेल जिसमें प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं, बॉल्स, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिमनास्टिक्स में उम्मीदों के अनुरूप हम प्रदर्शन नहीं कर सके. इन खेलों में सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं काफी है या इन पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है?
2: अगर बॉल्स की बात करें तो पिछली बार बर्मिंगम में हमारे 2 मेडल थे, लेकिन इस बार जिन इवेंट्स में हमारे मेडल्स थे वो इस एडिशन में नहीं थे, तो जिसके कारण बॉल्स में हमारे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो गई. बाकी अगर हम बोले इवेंट जैसे साइकिलिंग और जिमनास्टिक्स, यहाँ पे हमारा जिमनास्टिक में दीपा कर्माकर वॉज द लास्ट वन टू गेट अस अ मेडल 2014. उसके बाद से हमारा जिमनास्टिक में थोड़ा पलरा कम ही रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले एशियन गेम्स में वो इम्प्रूव होगा. सिमिलरली साइकिलिंग, अगर आप देखें साइकिलिंग एथलेटिक्स, ये ऐसे इवेंट हैं जो एशियन लेवल पे नहीं है जितने राष्ट्रमंडल में. आप कंपैरिजन नहीं कर सकते. अगर आप एथलेटिक्स में अगर अभी 10 मेडल है, आप उसको एशियन गेम्स में देखेंगे तो वो डबल होगा या ट्रिपल होगा. लेकिन वही अगर आप जो वेट लिफ्टिंग के जहां 8 मेडल दिख रहे हैं, आपको हो सकता है एशियन गेम्स में 0 दिखे, क्योंकि हमने 1998 से एशियन गेम्स में हमने कभी वेट लिफ्टिंग पे मेडल लाया ही नहीं है. हमने ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हैं लेकिन एशियन में नहीं ले पाए. सो एवरी शू डजंट फिट एवरीवन, व्हाट आई वुड लव टू से. तो इवेंट्स अगर हाँ, डिसअपॉइंटमेंट तो रही है. गोइंग फॉरवर्ड आई एम प्रीटी श्योर कि हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के साथ भी बैठेंगे ताकि इनकी प्लान डिवाइस कर पाए कि कैसा एक्सपोजर चाहिए, या कोई इनको हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर चाहिए, कोचेस चाहिए, जिसके तहत ये इम्प्रूवमेंट इन सारे डिसिप्लिन्स में जहां हमने थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा उसमें इंप्रूव कर पाए.
1: तो महावीर, 20 साल बाद 2030 में भारत में फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की वापसी होने वाली है. खेलों का फ्लैग भारत को सौंप दिया गया है. अब मेजबान के तौर पर हमारी बड़ी जिम्मेदारी होगी, और जिस तरह से कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी जैसे खेलों की गैर मौजूदगी के बावजूद हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका होगा?
0: नहीं, मौका तो होगा ही. हम होस्ट भी हैं, हम सबके दोस्त भी होंगे और हम सबसे ज्यादा टॉपर भी होंगे, इसी उम्मीद में हम करते हैं. क्योंकि अहमदाबाद में है और गुजरात में इसीलिए है कि मैं 20 साल गुजरात में मैंने बचपन के गुजारे हैं, इसलिए मैंने चौकस तरीके से विश्वास है कि गुजरात में आ वक्त जो गेम्स थे ये सुपर डुपर हिट थे. और मैंने देखा हर सांगी जी वहां ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, पीटी उषा जी वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने फ्लैग को लिया और एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. एंड आई नो एंड माई फ्रेंड फ्रॉम साई वुड ऑल्सो नो कि काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है. इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारी पूरी टीम गई थी ये स्टडी करने के लिए कि क्या कुछ वहां पे करना चाहिए, क्या कुछ होता है, और उसको अब इंप्लीमेंट किया जाएगा. तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि हम होस्ट की तरह से तो किसी को निराश नहीं करेंगे, जो हमने कभी नहीं किया है. लेकिन मैं परफॉर्मेंस की वाइज बिल्कुल, मेरी ये दिली इच्छा है कि हम ऑस्ट्रेलिया को इसमें जमकर टक्कर दें.
2: और जैसे महावीर जी ने कहा है, और इस बार हमारा चांस भी रहेगा क्योंकि हम लोग मेहजबानी कर रहे हैं जिसके तहत हमें सारी डिसिप्लिन्स में खेलने का मौका भी मिलेगा, नंबर ऑफ एथलीट्स भी बढ़ेंगे. अगर आपको अगर याद है 2010 में जब हमने मेहजबानी की थी तो हम मेडल टैली में सेकंड आए, वो हमारा आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है. और जैसे महावीर जी बोल रहे हैं तो उम्मीद है कि 2030 में हम सेकंड से टॉप में आए.
1: जी, तो एक सवाल यहाँ तो बनता है ना कि 101 पदक हमने दिल्ली में जीते थे, क्या सेंचुरी इस बार लगेगी और वो आंकड़ा भी इस बार पार करेंगे हम?
2: उम्मीद तो बहुत है. सरकार अपने एंड से बहुत ट्राई कर रही है, जैसे स्कीम जहां टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो फोकस्ड करती है सिर्फ एलीट एथलीट पे, फिर आपके नेशनल कोचिंग कैंप जो होती है एसीटीसी के थ्रू, और इवन ग्रास रूट में भी जहां खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स के नीति के थ्रू इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं. तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा कि हमारा भविष्य बहुत ही सिक्योर्ड लगता है. और बीइंग अ होस्ट अहमदाबाद में, आई एम 100% श्योर कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी. 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे कि नहीं वो तो समय ही बताएंगे.
1: और महावीर, चलते चलते ये बात भी होती है ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 हमारे ओलंपिक 2036 के मेजबानी के लिए रास्ता साफ करने का कितना बड़ा मौका बन सकता है?
0: नहीं, तब तक एलोकेट हो जाएंगे. इतनी देर तक कोई नहीं छोड़ता है. और लेकिन जिस तरीके से भारत ने पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे चैंपियनशिप अहमदाबाद में ही परफॉर्म किया है, पूरा प्रोत्साहन सरकार से मिल रहा है कि कितनी भी बड़ी टूर्नामेंट हो आप इंडिया में करके दिखाए, हमने करके दिखाया। तो बाय द टाइम 2030 होपफुली 2036 ऑलरेडी अनाउंस।

0: हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि 101 मेडल आए थे, 101 से ज्यादा शुभ आंकड़ा होता है 111 का, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अहमदाबाद, क्योंकि सारी शुभ जगहों की एक पहचान होती है, तो 111 मेडल मैं उम्मीद कर रहा हूँ अहमदाबाद में जरूर मिल जाए।
1: 111 वही नंबर था जो हमने पैरा एशियन में पिछली बार लेके आए थे। तो ग्लासगो में कल रात कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक तौर पर समापन हुआ और भारत ने 2030 में अहमदाबाद में होने वाले गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाली। हाइड्रो में हुए समापन समारोह में स्कॉटलैंड ने भारत को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान ओलंपियन नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा की मौजूदगी में कॉमनवेल्थ का झंडा आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा गया। इसके बाद भारत ने मशहूर गायक संगीतकार शंकर महादेवन के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अहमदाबाद 2030 की अपनी यात्रा शुरू की। इसके साथ ही ग्लासगो से कॉमनवेल्थ गेम्स का कारवां अहमदाबाद की तरफ बढ़ चला है। हमारी मेजबानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो चलिए हम अभी से अपने एथलीट्स का हौसला बढ़ाने और 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाएं। खेल विश्लेषक महावीर रावत जी और टारगेट ओलंपिक पोडियम के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड त्रिदीप भुइयां जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद। फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार।
2: The Commonwealth Games.